0: यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं आम में फल गिरने की समस्या एवं उसके समाधान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आम को फलों का राजा कहा जाता है और आम बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं सभी जगह मिलने वाला फल है। हमारे द्वीप समूह में आम की खेती सफलतापूर्वक की जाती है, लेकिन फूलों व फलों की गिरने की जो समस्या होती है वो लगभग हर जगह पर, हर द्वीप में पाई जाती है। आम के सफल उत्पादन के लिए फूलों एवं फलों के गिरने को रोकना बहुत ही जरूरी है। आम में उभयलिंगी या नर पुष्प पाए जाते हैं। इनमें से फल केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही बनते हैं। प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि प्रत्यक्ष रूप में उभयलिंगी दिखाई पड़ने वाले फूलों में भी अंडाशय का विकास नहीं होने से फूल बिना फल बने गिर जाते हैं। वैसे तो आम के फल लगने के समय से लेकर पकने तक लगातार फल गिरते रहते हैं, परंतु फल गिरने की 3 मुख्य लहरें देखी जाती है। पहली तो पूर्ण रूप से विकसित फल निषेचन के तुरंत बाद गिरने लगते हैं। फूले हुए अंडाशय वाले फूल जो कि फल की श्रेणी में आते हैं तथा उनका व्यास 4 मिलीमीटर से कम होता है, लगभग 20-60% इसी अवस्था में गिर जाते हैं। दूसरी लहर अप्रैल माह में दिखाई पड़ती है, जिसमें 4 मिलीमीटर से बड़े आकार के फल गिरते हैं। आम में फल गिरने की तीसरी लहर मई में आरंभ होती है, जिसमें 16 मिलीमीटर से 36 मिलीमीटर या उससे भी अधिक व्यास वाले फल गिरते हैं। आम के फलों के विभिन्न अवस्थाओं में गिरने के कई मुख्य कारण हैं, जैसे कि परागण का पर्याप्त मात्रा में ना होना। निषेचन के बाद भ्रूण बहुत से ऐसे रसायनों की आपूर्ति करता है जो कि फलों को पौधों पर लगे रहने में सहायक होते हैं। कुछ फलों में भ्रूण मर जाते हैं। सामान्य से अधिक तापमान वाले वातावरण में नमी की कमी और तेज़ हवाएं भी फलों के गिरने की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। भूमि में पानी की कमी होने पर भी फूल व फल गिरते हैं। उद्यान में पोषक तत्व की कमी होने से भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, जिससे वो नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, इसके अलावे उद्यान में आम का तैला, मिलीबग, जेसिड आदि कीड़ों के आक्रमण व एंथ्रैक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू आदि रोगों के आक्रमण से भी वृक्ष कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत सारे फूल व फल गिर जाते हैं। फलों को गिरने से रोकने के लिए किसान भाइयों, आप उद्यान में बहुत सारे काम कर सकते हैं। फल जब 1 सेंटीमीटर व्यास के हो जाएं तो 5 दिन के अंतराल पर अगर सिंचाई करें तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे फल कम गिरते हैं। उचित पोषक तत्वों के लिए 7 से 8 वर्ष के वृक्ष को प्रतिवर्ष 30 से 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 750 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश दें, जिससे फल गिरने की समस्या को कुछ हद तक रोका जा सकता है। जहां तक परागण का सवाल है, आम में परागण मुख्यतः विभिन्न प्रकार की मक्खियों से होता है। कुछ क्षेत्रों

0: शहद की मक्खियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उद्यान में मधुमक्खी पालन से परागण बढ़ जाता है। किसान भाइयों, आम में फूल आते समय किसी ऐसे फफूंद नाशक व कीटनाशक दवा का प्रयोग ना करें जिससे उद्यान में परागण करने वाले कीड़ों को नुकसान पहुंचे। आम में जो कीड़े एवं बीमारियां लगती है उन पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए 0.1% कैराथेन फूल खिलने से पूर्व छिड़कें। मैंगो हॉपर व मिलीबग के नियंत्रण के लिए 0.1% एंडोसल्फान का छिड़काव करें। इसके अलावा कुछ निश्चित रसायनों यानी वृद्धि नियंत्रकों को छिड़कने से भी फलों के गिरने में कमी आ सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं।
1: ये था एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष

और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देश भर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15-30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी स्ट्रेट आइलैंड मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल बुधवार 12 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी गुरुवार 13 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए एमवी नालंदा जलयान आज सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार की यात्रा पर कल बुधवार 12 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और गुरुवार 13 तारीख को शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। लिटिल अंडमान कानिकुबा चौरा तरेसा कचाल ननकौरी माकाचुआ और अफरा बे होते हुए कैम्बल बे के लिए एमवी सेंटिनल गुरुवार 13 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और रविवार 16 तारीख को रात 9 बजे कैम्बल बे से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कैम्बल बे ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर आज सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी गुरुवार 13 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

फैमिली जॉली बॉय शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम

के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत आज संध्या 5 श्री विजयपुरम से चलेगा और कल बुधवार 12 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल बुधवार 12 तारीख को सवेरे 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, आज बातें सफर की। दोस्तों, सफर की असली खूबसूरती रास्तों में नहीं उन एहसासों में होती है जो साथ चलते हैं। मंजिल की चाह में सफर को मत भूल जाना, रास्तों में मिले लम्हों को दिल में बसाना। हर मोड़ कोई नया सबक सिखाएगा, हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मंजिल तो एक दिन मिल ही जाएगी, असल खुशी तो सफर में ही नजर आएगी।

दोस्तों, सफर का असली मजा तब है जब रास्ता भी अपना लगे और मंजिल भी। सफर को हसीन बनाते चलो, हर पल को दिल से सजाते चलो। मंजिल की फिक्र थोड़ी कम करो, रास्ते से भी मोहब्बत किया करो। जिंदगी फिर कभी लौट कर नहीं आती, इसलिए हर सफर को खुल कर जियो।

दोस्तों, हर सफर अपने साथ नई कहानी लेकर आता है। जिंदगी का सफर सुहाना बनाते चलो, हर गम को हंसकर भुलाते चलो। जो मिला उसे दिल से अपनाते चलो, जो नहीं मिला उसे मुस्कुराकर जाने दो। हर मोड़ पर उम्मीद जगाते चलो और अपनी कहानी खुद लिखते चलो।

0: जी हाँ श्रोताओं, इस सुहाने से सफर से अब हमें दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी सुनीता तिर्की। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 327वीं कड़ी।

विभीषण से कुंभकर्ण के युद्धभूमि में आने के समाचार ने वानर सेना को उद्वेलित कर दिया। दांत किटकिटाते हुए वानरों ने शिलाखंड और वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, पर इसका कोई प्रभाव न होता देख हनुमान ने घूंसे से जो प्रहार किया तो कुंभकर्ण धरती पर आ गिरा। उठकर उसने जो घूंसा मारा तो हनुमान धरती पर थे। फिर तो नील नल समेत कई अन्य योद्धाओं को उसने धूल चटा दी। वानर सेना को भागते देख उसने अंगद, सुग्रीव आदि को अपनी कांख में दबा लिया। पार्वती को युद्ध वर्णन सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हनुमान संभल कर एक बार फिर उठे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी टूटी और मृतक का स्वांग करके वो कुंभकर्ण की कांख से फिसल निकले। फिसलकर निकलते हुए उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। घोर गर्जन करते हुए जैसे ही सुग्रीव आकाश की ओर उड़े कि कुंभकर्ण ने उनके पैर पकड़कर उन्हें धरती पर दे मारा। सुग्रीव संभल कर उठे और कुंभकर्ण पर फिर प्रहार किया। नाक कान कट जाने का बोध होते ही कुंभकर्ण का मन क्रोध और ग्लानि से भर गया। कानों और नाक के बिना उसका अत्यंत भयकारी रूप देखकर वानर सेना आतंकित हो गई। काल के समान बढ़ते आ रहे कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को अपना ग्रास बना लिया और उतनी ही संख्या में उन्हें कुचल मसल डाला।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 327वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 14 अगस्त तक समुद्र में न जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत उभरती रोइंग खिलाड़ी स्नेहा टोप्पो के साथ ली गई भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा मंजिल की ओर पतवार। तत्पश्चात हर घर तिरंगा पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे विनाश मसानी, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। सवेरे 9 बजे आप लुत्फ उठा पाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन होगा। गीत गाथा चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1327वीं कड़ी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्र गीत 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में विज्ञान संबंधी कार्यक्रम स्वतंत्रता के वीर सैनिक खुदीराम बोस पर चर्चा और हर घर तिरंगा पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और हर घर तिरंगा पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी अनुराधा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। और दोपहर बाद 3:30 पर होगा फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें जेस्ती फिलिप द्वारा प्रस्तुत गीत आप सुनेंगे और हर घर तिरंगा पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 4:30 पर कलाकार होंगे इकबाल बानो और सोमेश कुमार। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर।

की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे 4:45 पर। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6 बजे, जिसमें ग्रामीण देसी मुर्गी पालक जी कमला से बातचीत की जाएगी। 6:30 पर शाम में बहार कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में देश की शान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता के वीर सैनिक खुदीराम बोस पर चर्चा और हर घर तिरंगा पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 8:15 पर और 10:00 विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन कार्यक्रम और 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 7.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 87% और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 29.8 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:08 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:41। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:30 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं आपको फिर से बता दें, देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत उभरती रोइंग खिलाड़ी स्नेहा टोप्पो के साथ ली गई भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा मंजिल की ओर पतवार। तत्पश्चात हर घर तिरंगा पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर

0: परेशानी से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस वर्ष युवा शक्ति और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति सघन IEC अभियान के तीसरे चरण का उद्घाटन करेगी और द्वीप समूह में अगले 5 दिनों तक एक दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक पेश किया था। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश की युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने का भी उत्सव मनाया जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत @2047 की यात्रा का नेतृत्व है। अंडमान निकोबार पुलिस ने प्रातापुर स्थित ओपन डिस्ट्रेस कैंप से फरार हुए दो म्यांमार नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रातापुर बिडनाबाद बर्मा नाला और चुडिया टापू के स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिण अंडमान जिला पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन की समन्वित कार्रवाई ने इन फरार नागरिकों को पकड़ लिया है। पुलिस की ओर से खोज अभियान में सहयोग करने वाले आम नागरिकों को उचित नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय की ओर से सैन्य विमानों द्वारा फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। ये अभ्यास आज 18 और 25 अगस्त सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर

2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके अलावा कल 14, 19, 21 और 28 अगस्त को भी दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के लोगों से स्वयं को तथा अपने जहाज़ों को फायरिंग रेंज से दूर रखने की सलाह दी गई है। दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी द्वारा युवा शिक्षार्थियों के बीच खेल भावना, शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों के लिए रोड रेस का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन 17 अगस्त को सुबह 6 बजे नेताजी स्टेडियम में होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति सघन IEC अभियान के तीसरे चरण का उद्घाटन करेगी। इस संबंध में टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय सभागार में सुबह 9:15 से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सघन IEC अभियान का उद्देश्य युवाओं और समुदायों के बीच HIV, एड्स और अन्य यौन संचारित संक्रमणों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। कार्यक्रम में HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 के अलावा राष्ट्रीय एड्स टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 सहित उपलब्ध सेवाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव वंदना राव मुख्य अतिथि और स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ये अभियान 2 महीने तक चलेगा, जिसमें जागरूकता गतिविधियों सहित सरकारी अस्पतालों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान रेड रिबन क्लब के नोडल अधिकारियों और विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर आज और अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने और निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मछुआरों को 14 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न 9 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आज से 17 अगस्त तक ऑफलाइन माध्यम से संबंधित विभागों में जमा करने होंगे। अस्थायी वरीयता सूची 19 अगस्त को जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियां 20 अगस्त तक जमा किए जा सकते हैं। अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन 21 अगस्त तथा परामर्श 22 अगस्त को आयोजित होगा। आवेदन पत्र कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। नियमित कक्षाएं 24 अगस्त से शुरू होंगी। उधर अंडमान कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों के रिक्त पड़े सीटों पर सीधे प्रवेश लिया जाएगा। इसके लिए कल से 14 अगस्त तक दोपहर 2:30 अंडमान कॉलेज के सम्मेलन कक्ष में उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। मुख्य भूमि के संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वीप समूह के छात्रों के लिए आरक्षित विभिन्न व्यवसायिक, तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के आवंटन हेतु आवेदन करने वाले सभी संबंधित उम्मीदवारों से कहा गया है कि इन सीटों के लिए जारी अस्थायी वरीयता सूची अंतिम वरीयता सूची मानी जाए। BEd भोपाल, BE, BTech, लेटरल एंट्री और स्नातकोत्तर की रिक्त सीटों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि में उपस्थित रहें। बची हुई सीटों को मेरिट के अनुसार बाद में आवंटित किया जा सकता है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूतापीय आकलन एवं विकास के लिए एजेंसियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। इसके अलावा अखबार ने कल टैगोर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजित करने के समाचार को भी प्रमुखता

दी है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा फ्लैग पॉइंट पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा फहराने के समाचार को सचित्र प्रकाशित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीबी देखभाल और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च करने के समाचार को इन्फो इंडिया ने, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेलुलर जेल से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा रैली निकालने के समाचार को अपनी बड़ी खबर बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस वर्ष युवा शक्ति और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति सघन IEC अभियान के तीसरे चरण का उद्घाटन करेगी और द्वीप समूह में अगले 5 दिनों तक एक आध स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी।

कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। जब दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। जब कदम एक साथ बढ़ते हैं तो मंजिल खुद करीब आ जाती है। और जब बात अपने देश की हो तो हर सांस तिरंगे के नाम होती है। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हर दुश्मन का हौसला तोड़ देती है। देश पहले, फिर हम, यही जज्बा हर सच्चे भारतीय की पहचान है।

दोस्तों, जब भी हमारे देश की शांति, सुरक्षा और सम्मान पर कोई चुनौती आती है, तब हर सच्चे भारतीय का दिल अपने वतन के लिए धड़क उठता है। देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों, एकता और आपसी भाईचारे में दिखाई देता है। ऐसे में हर एक देशवासियों का फर्ज बनता है कि हम भी सरफरोशी की तमन्ना दिल में जलाए रखें।

0: वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, हर कोशिश एक नई उड़ान बनेगी। मत रुकना रास्तों की कठिनाइयों से, मत रुकना रास्तों की कठिनाइयों से, क्योंकि तेरी लगन ही तेरी सबसे बड़ी शान बनेगी। इस कार्यक्रम में मैं शवान आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रुख करते हैं खेल जगत कार्यक्रम की ओर।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कदमों में आत्मविश्वास और दिल में जीत का जज्बा, हर अभ्यास उसे मंजिल के करीब ले जाता है और हर चुनौती उसे और मजबूत बनाती है। ये होती है एक खिलाड़ी की पहचान। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक युवा एथलीट से जो रोइंग खेल से जुड़ी है और अपने शानदार प्रदर्शन से इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं स्नेहा टोप्पो का। स्नेहा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: तो सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम स्नेहा टोप्पो है और मेरी उम्र 18 साल है और मैं बिमली टाउन के छोटे से गांव से आई हूँ और मैं अभी साई में 4 साल से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ।
0: स्नेहा, आप हमारे श्रोताओं को रोइंग खेल के बारे में बताइए।
1: रोइंग एक ऐसा खेल है जिसे हमें मतलब पैडल से चलाना होता है, जैसा पैडल होता है हमारा और सीट होता है हमें मूवमेंट के लिए, हमारे पैर रखने के लिए फुटरेचर होता है, शू होता है उसमें। तो हम जैसा एक रोइंग में दो तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक स्कल होता है और एक स्विप होता है। स्विप जो है हम एक पार्टनर एक इंसान के पास एक पैडल होगा और जैसा स्कल होता है तो एक इंसान के पास दो पैडल होगा। तो उस चीज़ से हमें स्लाइड से जो है हमें आगे पीछे करने, हम आगे जाते हैं पीछे आते हैं, तो उस तरीके से होता है। बोट्स हमारा होता है बड़ा, सिंगल स्कल, डबल स्कल, कॉक्सलेस पेयर, कॉक्सलेस फोर वगैरह सब होता है।
0: आप रोइंग खेल से कब जुड़ी और कितने सालों से ये खेल आप खेल रही हैं?
1: मेरे रोइंग को 4 साल हो गए। मैं 2022 में मैं साई से रोइंग में जुड़ी हूँ और मैं इस रोइंग में जब मैं स्कूल पढ़ रही थी उस टाइम पे मेरे जो पीटी सर और मेरे पीटी मैम ने मुझे इनकरेज किया कि एक साई जो है फ्री कोचिंग दे रहा है, वहाँ पे तुम जाओ और अपना करियर आगे बढ़ाओ। मैंने सिलेक्शन दिया साई में रोइंग का, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तब मैं जाके रोइंग के बारे में जानी, जब मैं जानी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं उस खेल को और आगे करूँ।
0: तो स्नेहा, आप हाल ही में आपने 12th की परीक्षा आपने पास की है, तो आप पढ़ाई और रोइंग के बीच कैसे आप मैनेज करती हैं?
1: जब मैं साई में आई

0: तब तो मैनेज नहीं हो पाता था कि हाँ पढ़ाई और खेल को मैनेज नहीं कर पाते थे, बट धीरे धीरे करके हमें उस चीज़ की आदत लगी, तब हमें समझ आया कि हमें पढ़ाई और खेल को कैसे इम्पोर्टेंस देना है, तो उस तरीके से हम अपने खेल और पढ़ाई को मैनेज करते थे।
1: आप साई से जुड़ी हुई है, तो साई में एक रोइंग खिलाड़ी को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, आपका डेली रूटीन कैसा होता है और आपके डाइट के बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: हमारी रोइंग में बहुत तरह की हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हर एक डेली रूटीन में हम लोग को अलग अलग ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे जिम वगैरह, इंडोरेंस ट्रेनिंग, और हमें डेली हम सिपी घाट में जाके हम बोटिंग करते हैं, अपने रोइंग की ट्रेनिंग करते हैं। हमारी डेली डाइट में हमें 2 eggs और दूध और चना और केला वगैरह देते हैं जब सुबह हम ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम, और लंच और डिनर मिलता है जिसमें हमें नाश्ता में अलग अलग वराइटीज़ मिलता है, और लंच के टाइम में हमें फिश मिलता है और डिनर के टाइम में चिकन वगैरह मिलता है, तो और जो सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह में हमें अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं।
1: जी, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर डाइट आपको दिया जाता है। तो स्नेहा ये बताए कि इस खेल के लिए आपको प्रतिदिन कितने घंटे का अभ्यास करना पड़ता है।
0: हम सुबह 4 बजे उठते हैं और हमारा 4:30 को हमारा बस होता है हमें सिप्पी घाट लेके जाने के लिए, तो वहाँ पे हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें स्टेडियम से सिप्पी घाट आने में टाइम लगता है, तो हम वहाँ जाते हैं अपना ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारा 2 घंटा का ट्रेनिंग होता है, 2-2.5 घंटा का ट्रेनिंग होता है, फिर हम वहाँ से 8:30 बजे तक हम वापस आ जाते हैं।
1: स्नेहा, अब तक आपने कितने मैचेस में पार्टिसिपेट किया है?
0: मैंने 2022 से बहुत सारे मैचेस खेले हैं, इवेंट्स खेले हैं मैंने, बट मेरा अभी तक का 5 मेडल्स है नेशनल्स में, जैसा मैंने अपना बहुत सारा इवेंट्स खेला है, और मैंने 2024 में मेरा फर्स्ट मेडल लगा था जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप आर्मी नोड में, पुणे में मेरा सिल्वर मेडल था। फिर उसके बाद मैं जनवरी में मैंने अस्मिता रोइंग लीग खेला जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, और फिर उसके बाद मैंने चैलेंजर्स स्टेट चैलेंजर्स खेला था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा, उसके बाद फिर मैंने अस्मिता रोइंग चैम्पियनशिप अभी हाल ही में खेला है 2026 में, अभी हाल ही में मैंने अस्मिता रोइंग चैंपियनशिप खेला जिसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा, और अभी रिसेंटली अंडर 23 में जून महीने में तब मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला।
1: जी, जब आप मैच खेलने के लिए जाती है, जब आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने जाती है, तो शुरुआती तैयारी आपकी कैसी होती है?
0: शुरुआती तैयारी, हम पहले तो हम अपने माइंड को सेट करते हैं कि हमें कैसे खेलना है, वहाँ जब हम एक बार चले जाते हैं हमें कैसे खेलना है और हमें क्या करना है, तो हम पहले अपने माइंड को सेट करते हैं, उसके बाद हम अपने वार्म अप्स में अपने ध्यान देते हैं कि हम वार्म अप्स करते हैं और अपने बॉडी को हीट करते हैं ताकि हमें इंजुरी से बचे, हम अच्छा से खेल पाए और अपना मैच अपना 110% अपना मैच में फोकस करके जीत पाए।
1: स्नेहा, जब आप प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट करती है, तो उसमें आने वाली सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: हमारा हाथ और पैर का दोनों का ही हमारा ज़्यादा लगता है, तो उसमें हमारा पैर जो है हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमारे पैर में बहुत पेन होता है उस टाइम पे, बट हमें हमारे माइंड में ये रहता है कि हमें छोड़ना नहीं है, बस लास्ट तक हमें करना होता है। हमारा इवेंट 2 किलोमीटर का होता है और बहुत लंबी रेस होती है उस टाइम पे, तब जब तक हम दिल से और दिमाग से नहीं सोचे तब तक हम नहीं कर पाएंगे, पेन सबको एक साइड रख के हमें करना पड़ता है उस चीज़ को।
1: जी, जैसे कि आपने कहा, दिल और दिमाग से सोचकर आपको खेलना है क्योंकि उस समय आपको बहुत पेन होता है, तो एक मेंटली फिट रहना, अपने आप को फोकस्ड रखना कितना ज़रूरी है एक रोइंग प्लेयर को।
0: दिल और माइंड में हमें बहुत ही फोकस करना चाहिए क्योंकि जब हमारा एक डिसिप्लिन होता है उस जगह पे, उस डिसिप्लिन को हमें फोकस करना पड़ता है कि हम करना है हमें, और इसके आगे और कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास कि हमें करना ही है। अब हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे स्टेट को आगे लेके जाना है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को हमें आगे लेके जाना है, तब दिमाग में यही रहता है कि हमें स्टेट को रिप्रेजेंट करें, खुद के लिए अपने परिवार के लिए खेल रहे हैं, अपने कोचेस के लिए खेल रहे हैं, खुद के लिए खेल रहे हैं, तो हमें ये रहता है कि हमें बस करना है, बस कुछ भी हो जाए हमें करना ही है।
1: तो स्नेहा, जैसे कि आज का समय सोशल मीडिया का है, सभी युवाओं के हाथ में फोन नजर आते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त युवा वर्ग जो है फोन यूज करने में बिताते हैं, तो क्या आप फोन यूज करती हैं? और साई में जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग जो है सुबह से शुरू हो जाती है, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं?
0: तो जैसे कि हम सुबह जैसा ट्रेनिंग वगैरह में बिजी रहते हैं, उसके बाद आके हमें जो रेस्ट करना है तो हमें रेस्ट करके फिर हमें शाम का सेशन रहता है हमारे ट्रेनिंग का, तो हम ट्रेनिंग करके आते हैं, फिर हम डिनर के लिए जाते हैं, डिनर के बाद में हमें 1/2 आवर फ़ोन मिलता है जो कि हम जैसे घर में बात करते हैं या कुछ हमें कुछ इंपॉर्टेंट्स कुछ ऑनलाइन से निकालना होता है या कुछ पढ़ाई के रिलेटेड कुछ करना होता है तब हम करते हैं, तो हमें बस 1/2 आवर ही एक दिन में फ़ोन मिलता है।
1: एक अच्छा रोइंग प्लेयर में किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए?

0: एक रोइंग प्लेयर में देखा जाए तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन से ही हम आगे जा पाएंगे। और जैसा जैसे मैंने बोला था कि माइंडसेट, माइंडसेट और डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे रोइंग में, बहुत ज़्यादा।
1: स्नेहा, आपने बताया कि आप 2022 से रोइंग से आप जुड़ी हुई है, आपके परिवार और आपके कोच का क्या योगदान रहा?
0: मेरे परिवार ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत हर चीज़ में। मैंने जब भी कुछ भी मांगा तब मुझे हमेशा भले वो कभी यही नहीं सोचते थे कि हमारे पास नहीं होगा करके, हमेशा मैंने जब भी कुछ भी चीज़ें परिवार से मांगे हमेशा दिए मुझे। और जैसे कि मेरे कोच जनील कृष्णन सर, जस्टिन थॉमस सर और मनीष कुमार तिवारी सर, इन तीनों ने मुझे इतना मोटिवेट किया है आगे जाने के लिए। इतना योगदान है उन लोगों का कि मैं आगे जाऊं और मैं आगे करूं। और मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूं कि मुझे ऐसे पेरेंट्स और मुझे ऐसे कोचेस मिले कि मैं यहाँ तक, इतने सालों से यहाँ तक आके मैं कर पाई और मैंने इतने मेडल्स जीते। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके।
1: स्नेहा, भविष्य में रोइंग के क्षेत्र में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं?
0: मैं इतने साल से रोइंग कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो पाऊँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ और अपने माँ बाप का और अपने कोचेस का नाम ऊपर कर पाऊँ। और मुझे मुझे बहुत दिल है कि मैं इंडिया टीम में जाऊँ और मैं वो इंडिया की जर्सी पहनूँ और मतलब मैं दिखूँ उस जगह में कि मैं इतना मेहनत और इतने घर के स्ट्रगल्स को देख के आके मैं आज यहाँ खड़ी हूँ करके।
1: जी, अवश्य ही आगे जाकर आप इंडियन टीम से जुड़ी की इस बात की हम आशा रखते हैं। स्नेहा, यहाँ पर और भी जो युवा पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं जो रोइंग से जुड़ना चाह रहे हैं, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं?
0: रोइंग एक ऐसा गेम है जो किसी को आज तक उतना रोइंग के बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए जो ये साई है, हम हर साई से हर साल ट्रायल होता है जिसे सबको पता चलता है, वो आते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि साई का जो ट्रायल है सब आइए और उस चीज़ को अटेंड करिए और सेलेक्शन दीजिए और इससे आगे बढ़िए, तब आपको रोइंग के बारे में सारी चीज़ें पता चलेगा।
1: तो कार्यक्रम के अंत में जो युवा दोस्त है आपको सुन रहे हैं और रोइंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें संदेश के तौर पर, सलाह के तौर पर क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने करियर को देखिए, ना ही अपने करियर को कुछ चीज़ में बर्बाद करिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन रखिए, कि आगे एक सोच रखिए कि मैं आगे तक जाऊँगा या जाऊँगी, कि जैसे रोइंग किसी को पता नहीं है, तो आइए और सीखिए, इस चीज़ आपको बहुत आगे पहुँचाएगा। जैसे कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं यहाँ में आके इस चीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: स्नेहा, आप कार्यक्रम में आई, रोइंग के विषय में हमें इतनी अच्छी बातें बताई, आपके हौसले को देखकर, आपके कठिन परिश्रम को देखकर हमें इस बात की पूरी आशा है कि आगे जाकर इस क्षेत्र में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, हमारे द्वीपों के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करेंगी। आप कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत उभरती रोइंग खिलाड़ी स्नेहा टुप्पो के साथ ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। विषय था मंजिल की ओर पतवार। इनके साथ भेंट कर रही थी हेमलता व इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला। दोस्तों, अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, तिरंगा जब आसमान में लहराता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसमें सिर्फ तीन रंग नहीं, पूरे भारत का दिल नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर

तिरंगा अभियान की शुरुआत 9 अगस्त से शुरू हो चुकी है और जो कि 17 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि देश के प्रति हमारे सम्मान और प्रेम को व्यक्त करने का एक अवसर भी है। स्वतंत्रता दिवस की गूंज अभी से देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में देशभक्ति का रंग भी दिखाई देता नजर आ रहा है। ऐसे में जब घर की छत पर तिरंगा लहराएगा तो हर गली, हर मोहल्ला और हर गांव देशभक्ति के रंग में रंग जाएगा। दोस्तों, तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारे वीर जवानों के बलिदान, साहस और शौर्य की निशानी है। इसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि आज हम इस तिरंगे को शान से आसमान में लहराता हुआ देख सके। जब भी ये तिरंगा हवा में लहराता है तो हमें उन वीर जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने आज का बलिदान देकर हमारा आने वाला कल सुरक्षित किया। इसलिए तिरंगे का सम्मान करना केवल हमारा अधिकार नहीं बल्कि उन वीरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी है। दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य केवल हर घर तिरंगा लगाना ही नहीं बल्कि हर नागरिक के दिल में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना भी है। ऐसे में इस अभियान के माध्यम से हम अपने घरों पर तिरंगा फहराकर न केवल अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हैं बल्कि उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम भी इस अभियान का हिस्सा बने, हर घर तिरंगा फहराए, हर दिल में देशभक्ति की भावना जगाए और अपने तिरंगे की आन बान और शान को हमेशा ऊंचा रखे, क्योंकि तिरंगा सिर्फ हमारी पहचान नहीं बल्कि ये हमारे भारत की शान है और इस शान को बनाए रखना हर हिंदुस्तानी का सम्मान है। जी हाँ दोस्तों, जब जब तिरंगा आसमान में लहराएगा हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से मुस्कुराएगा।

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

जुबिन नौटियाल की आवाज में ये था बाघी 2 फिल्म का गाना, जिसे लिखा था सईद कादरी ने व संगीत से सजाया था मितुन ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से चलते चलते यही कहना चाहूंगी कि मंजिल पाने का जुनून होना चाहिए, दिल में जीत का सुकून होना चाहिए। मुश्किलें तो रास्ते में आते रहेंगी, बस हौसलों में दम होना चाहिए। अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है, इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक

0: देशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
1: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त नाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
4: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट।

0: जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H1B और L1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सल

0: की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Band today with a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitating entry of e-visa holders has risen to 88. A report.
4: The Home Ministry said the newly notified points include Bhopal and Tirupati airports and 9 land ports at Agartala, Atari, Daranga, Gede, Gojatanga, Haridaspur, Jaigaon, Dwaki and More. The Ministry said the move will further enhance the attractiveness and utility of the e-visa facility for international travellers. Around 95% of e-visa applications are processed in less than 72 hours.

श्रोताओं, बिनाज मसानी को सुनने के बाद अब पेश है भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में इब्राहिम अश्क का लिखा कलाम।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे पिनाज मसानी, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है सुबह के 9 बजे। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने एक दूजे के लिए फिल्म से लिया है। स्वर दिया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, बोल आनंद बख्शी के हैं, वह धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फारूक कैसर का लिखा एवं बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया हुआ आइए सुनते हैं डिस्को डांसर फिल्म का गाना। स्वर दिया है उषा उत्थुप, बप्पी लहरी और साथियों ने।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में आइए सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का गाना, जिसे लिखा है नरेंद्र शर्मा ने व संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: समझ गया भाई, जरूरी है, क्योंकि सेहत बोले तो जिंदगी और सेहत बोले तो खुशहाली।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के

0: वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: ब्रेक के बाद फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने नसीब फिल्म का ये गीत सुना, बोल आनंद बख्शी के थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने नास्तिक फिल्म का ये गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी व संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम शास्त्र संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने वाले हैं यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में बजाया मैंडोलिन वादन। इनके साथ संगत कर रहे हैं मृदंगम पर केवी प्रसाद, कंजीरा पर वी नागराजन और घटम पर टीवी वासन। तो लीजिए, पहले प्रस्तुत है यू श्रीनिवास का मैंडोलिन पर बजाया राग श्री, जो आदि ताल में निबद्ध है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: एक बार फिर स्वागत है हमारे शास्त्र संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए राग गौला, ताल है आदि और कृति त्यागराजा की।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में जावेद अख्तर की लिखी रचना, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने, और फिल्म है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

सचिन सांघवी और जिगर सरैया के आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए फिल्म ए फ्लाइंग जेट का गीत। वायु के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सचिन जिगर ने।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में इस गीत को रचा है समीर ने रेस 2 फिल्म के लिए और स्वरबद्ध किया है बेनी दयाल शालमली खुलगड़े ने।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए मोहित चौहान व प्रियंका नेगी की आवाजों में 72 आवर्स फिल्म से, जिसके संगीतकार है संजॉय बोस और शब्दकार है सुजाता देवरारी व विकास चौहान।

डिशों फिल्म से सुनिए कुमार व आशीष पंडित की रचना प्रीतम की संगति में। इस गाने को आवाज दी है जोनिता गांधी व अमित मिश्रा ने।

0: श्रोतो, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं संतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं SP चौहान फिल्म का गीत।

निगम व मिस पूजा की स्वरों में। इस गीत को संगीत से सजाया है विभास ने और बोल है अभिन्द्र कुमार उपाध्याय की।

फिल्म हाउसफुल से सुनिए समीर का लिखा गीत शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में, और इस गीत को स्वरबद्ध किया है तरुण सागर और अलिसा मेंडोनोसा ने।

श्रोताओं, अगला गीत चलिए सुनते हैं लुका छुपी फिल्म से। इस गीत की संगीतबद्ध किया है तनिष्क बगची ने, अल्फाज लिखे हैं टोनी कक्कर ने और आवाज है टोनी कक्कर व नेहा कक्कर की।

नोटबुक फिल्म से सुनिए अगला गीत। इस गीत के धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने, गीतकार है कौशल किशोर और स्वर कलाकार है कमल खान।

अगला गीत पेश है जंगली फिल्म से, और इस गीत को सुरों से सजाया है जुबिन नौटियाल ने। गीत रचयिता है अन्विता दत्त और आवाज दी है समीर उद्दीन ने।

विशाल और शेखर की बनाई धुन में सुनिए भारत फिल्म का गीत। गीत के शब्द रचे हैं इरशाद कामिल ने और स्वर दिए हैं अभिजीत श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए दे दे प्यार फिल्म से। इस गीत के शब्द रचे हैं कुणाल वर्मा ने, सुरों में ढाला है अमाल मलिक ने और अपनी आवाज से गीत को सजाया है अरिजीत सिंह ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत की ओर बढ़ने से पहले सुनिए एक आवश्यक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, तो चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अंकित तिवारी की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, संगीत अंकित तिवारी की और फिल्म का नाम एक विलन।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल यहीं पे समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1347वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत

0: सर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं।
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
1: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
1: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
0: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
0: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
1: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
0: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
1: जी।
0: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
1: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
1: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
0: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
1: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना।

0: ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
1: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
0: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए।

0: इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up.
1: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
4: हमारी मांगे पूरी करो।
2: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
4: रोलेट एक्ट वापस लो।
2: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
1: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के

0: साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: ए, ए, ए, ए, गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? I say fire, fire again!
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: Oh, shut up! देख, ये सबक काफी है। About turn, fire!
0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
3: मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी
4: कर दे, कर दिया।
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
5: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा।

0: और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
1: जनरल डार।
2: यस सर।
1: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
2: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
1: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
2: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
1: क्या वार्निंग नहीं दी?
2: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
1: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
2: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय, निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: खत्म हुआ झगड़ा।
1: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
2: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
1: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
2: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
1: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
2: छह एकम छह,
1: छह दुनी बारह,
2: छह दुनी बारह।
3: राहुल खेले नहीं आ रहे?
1: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
2: छह ती अठारह,
1: छह चौक चौक।
0: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
4: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
1: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
4: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
1: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
4: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
1: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
4: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
0: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
2: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
1: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
2: करता है, पर पहाड़ा
1: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें।
2: फिर पहाड़ा कब?
1: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
2: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
1: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
2: पक्का?
1: पक्का।
2: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
1: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
2: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
1: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
0: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
5: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1347वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 11:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले सुनिए समीर का लिखा गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में मैं ऐसा ही हूँ फिल्म के लिए। इस गीत को स्वरबद्ध किया है उदित नारायण व अलका याग्निक ने।

दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की

आइए अब सुनते हैं अगला गीत चांद सा रोशन चेहरा फिल्म से। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण ने, संगीतकार है जतिन ललित और बोल लिखे हैं समीर ने।

मुसाफिर से सुनते हैं ये गीत सुखविंदर सिंह व सुनिधि चौहान के स्वरों में। इस गीत के गीतकार हैं देव कोहली और संगीत

0: है विशाल और शेखर की।
1: सौ

0: श्रोताओं, गानों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी वक्त है एक आवश्यक सूचना की।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए सुनते हैं अदनान सामी के संगीत निर्देशक में समीर का लिखा गीत, जिसे आवाज से सजाया है सोनू निगम ने। फिल्म का नाम है लकी।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: डू यू प्ले फॉर द रश और डू यू प्ले इट स्मूथ? लीड एवरी प्ले विद द न्यू ब्रेजा, नाउ अवेलेबल विद द एक्साइटिंग टर्बो बूस्टर जेट रिफाइंड K15C इंजन एंड अंडरबॉडी SCNG विद 5-star सेफ्टी रेटिंग, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड फीचर्स लाइक वेंटिलेटेड सीट्स, न्यू 10.1-inch इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद प्रीमियम ऑडियो। एवरी रोड इज योर प्लेग्राउंड। द न्यू ब्रेजा नाउ अवेलेबल एट एन इंट्रोडक्टरी स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹7.39 lakh। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे एट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम।
0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं सुनिधि चौहान व कुमार सानू की आवाजों में अंतिम गीत, एक से एक बढ़कर एक फिल्म से। इस गीत को धुनों से पिरोया है आनंदराज आनंद ने। शब्द रचनाकार है मजरू सुल्तानपुरी।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आप सभी के लिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവിൽ 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का

0: आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई को होगी। विकास विभाग के सचिव संदीप सिंह ने कहा है कि आवास व्यवस्था को अवगत करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर की 1:10 हुए हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, आपके नाम फिल्मी पैगाम।

इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीत। हमें व्हाट्सएप करने के लिए नोट कर ले, हमारा नंबर है 9474234000। आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम हमारी पहली फरमाइश के साथ। आज की पहली फरमाइश हमें भेजी है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, हीरामन शेंडे, किशोर धनाडे, हिम्मतराव शुंगारे, संजय कुमार गेडाम, किशोर गुप्ता और दीपक कुराडे ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं सरगम फिल्म का गीत लता मंगेशकर व मोहम्मद रफी की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, जिसे भेजा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। इन्होंने सुनना चाहा है यादें फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, स्वरबद्ध किया है स्नेहा पंत व हरिहरन ने और संगति है अनु मलिक की।

जिला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से हमारे श्रोता शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने यह गीत फरमाइश किया है। फिल्म हसीना मान जाएगी का सदाबहार गीत है। इस गीत को

0: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनिए एक आवश्यक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। शादीपुर श्री विजयपुरम से एमके सूर्य प्रकाश जी ने फरमाइश की है अपनी पत्नी के लिए। वह सुनना चाहते हैं यादों की बारात का खूबसूरत गीत। इस गीत को स्वरों से सजाया है आशा भोसले व किशोर कुमार ने। बोल है मजरू सुल्तानपुरी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें मिली है मच्छी लाइन श्री विजयपुरम से। शीला जी ने यह गीत फरमाइश किया है अपने पति श्रीदास जी के लिए। फिल्म परिंदा का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले व सुरेश वाडकर ने। इस गीत के शब्द रचनाकार है खुर्शीद हलौरी और धुन है आरडी बर्मन की।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज के आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का सफर यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Of the possibility of heavy rainfall in Kullu sub-division today, all educational institutions have been officially closed. According to a report from the State Emergency Operations Center, traffic has been disrupted on 259 roads across the state due to landslides and rain. Besides, 161 power transformers and 54 drinking water supply schemes have also been affected. The Mandi-Kullu National Highway 21 has been blocked near Jhalogi due to shooting stones falling on the road. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy rainfall in 5 districts, Shimla, Sirmaur, Kangra, Hamirpur and Mandi. A yellow alert has also been issued for 4 other districts, Chamba, Kullu, Solan and Bilaspur today. The department has advised people to exercise caution during adverse weather conditions and avoid unnecessary travel to vulnerable areas. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: The Indian Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura and Rajasthan over the next 2 days. In Canadian Open 2026, former world number one Iga Swiatek of Poland stormed into the semifinals with a 6-2, 6-1 win over Russia's Diana Schneider in 64 minutes. The six-time Grand Slam champion will face Ukraine's ninth seed Elena Svitolina, who defeated Ekaterina Alexandrova . Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. Sensex lost 398 points to 78,145 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Disruption continues in Parliament amid opposition uproar on several issues. Both houses adjourned till 2 p.m. Supreme Court clarifies immediate FIR must be registered for every missing person, irrespective of age or gender. 9 people killed in overnight Russian airstrikes across Ukraine. IMD issues alert for heavy to very heavy rainfall in parts of Himachal Pradesh for today and in Odisha for next 3 days. And in Canadian Open tennis, Poland's Iga Swiatek storms into semi-finals with straight set win over Russia's Diana Schneider. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
3: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
2: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने

0: अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
2: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
3: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने

0: दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: জীবন এখন বড্ড ফাস্ট, তাই বাড়ি বসে হ্যাসল ফ্রি ব্যাংকিং এর জন্য সুইচ করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং এ,
3: যেখানে আপনি পাবেন ডেডিকেটেড ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ অ্যাসোসিয়েট, যিনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাকে স্মার্ট অ্যাডভাইস দেবেন এবং সমস্ত কাজ কমপ্লিট করুন লাইটনিং স্পিডে, অর্থাৎ সিমলেস ব্যাংকিং এক্সপেরিয়েন্স এন্ড মেনি আদার এক্সাইটিং বেনিফিটস।
2: আজই পৌঁছে যান নিজের নিকটবর্তী SBI ব্রাঞ্চে এবং অ্যাক্টিভেট করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং। টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वही मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी सूचना में बताया जाता है कि अंडमान द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
5: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

तो दोस्तों, संगीत का ये खूबसूरत नॉनस्टॉप म्यूज़िक सफ़र यहीं थमता है। उम्मीद है इन लगातार बजते नगमों में आपके सफ़र और आपके समय को और भी सुहाना बनाया होगा। सुनते रहिए संगीत और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया है रहना है तेरे दिल में, परदेस, जो जीता वही सिकंदर, बचना है हसीनो, रॉक स्टार, DDLJ, यस बॉस, जब वी मेट, ओम शांति ओम, मैं हूं ना, फिल्म का गीत।

FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 3:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। मैं रचना आप सभी का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, कभी किसी आंखों में देखकर आपको लगा है कि बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। रिश्ते की कुछ बातें ऐसी होती है जो शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती।

कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि हमारी यादों का हिस्सा बनकर हमेशा साथ रहते हैं। वक्त कितना भी गुजर जाए, उनकी याद दिल के उतने ही करीब रहती है।

कभी लगता है सब कुछ बहुत आसान है और कभी एक छोटी सी बात भी बहुत कुछ सिखा जाती है। जिंदगी की यही तो खासियत है, हर दिन अपनी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ देती है।

जिंदगी की कहानी भी कितनी अजीब होती है श्रोताओं। कभी सब कुछ हमारी उम्मीद के मुताबिक होता है और कभी कहानी अचानक ऐसी दिशा ले लेती है जो हमने सोचा भी नहीं होता।

दोस्तों, शाम होते ही जब थोड़ा सन्नाटा सा हो जाता है तो अक्सर पुरानी बातें याद आने लगती है। कोई पुराना चेहरा फिर नज़र आने लगता है और मन फिर से उन्हीं यादों में डूब जाता है।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

श्रोताओं, कुछ पल बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी याद बहुत लंबी होती है। इसीलिए जो पल आज आपके पास है उसे खुलकर जी लीजिए, क्योंकि शायद यही पल कल आपकी सबसे प्यारी याद बन जाए।

तो श्रोताओं, आज के यूं ही गाते रहो कार्यक्रम में गीतों का यह खूबसूरत सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज के गीतों ने आपका अच्छा साथ निभाया होगा और आपका समय सुहाना बनाया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और अपने पसंदीदा गीतों का आनंद लेते रहिए। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती FM श्री विजयपुरम है। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्ला मेंजी रोखरे हमांग इंगजे तका इंगम मीटिंग वे 438.6 मीटर है किंगम 684 किलोहर्ट्स लगती है आंग इन रमांगलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तांग

स्टोरी क्रिएटिविटी हार्ड वर्किंग हेक तहेक ने स्टोरी कारेबियन कल्चर न तकहुत गर चोक हिनांग रिनांग ने इंगवल नाम स्टील इंस्ट्रूमेंट नाम साउंड ए न तहेक गज नवी गर न यूनिवर्सल लैंग्वेज न लैंग्वेज नाम म्यूजिक फिने लही अन नाम म्यूजिक अब तंगु ही हमूल तन ही आंगो अयंग हेंग तपरो अय कदिनरी कैनरे क एलो रे ngam sweet sound ngam steel pen ne inspire me jal tarik mahe ine generation dangamu angun gitar hayen fine lehi iala ngam world steel pen day ingisakama

0: Dikaknya, Ketsi Philip Ahanyo nuntai menehang itin keke ingi program tak suhu ni dan natin keke. Asa ngam terahai yang beritaki itu ditakhi, telek tensin nga engetel nga ang tengamu, hek in huric, hangrong itu kasada, itu fan kayo telah harap, salam yan ngay.
1: श्रोता अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं इकबाल बानू और सोमेश कुमार। सबसे पहले आइए सुनते हैं इकबाल बानू के आवाज़ में चंद गज़लें।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले सुनते हैं आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5 तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगलीर अलगम। बंगला कार्यक्रम 5:30 पर आप सुन पाएंगे। शाम 6 किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी, जिसमें आप मसालों का कारोबार आत्मनिर्भरता का आधार विषय पर एन शफीमा बेगम से भेंट वार्ता सुन पाएंगे। शामे बहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:30 पर। 7:15 पर आप मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएँ सुन पाएंगे। 7:30 पर आप युवाणी कार्यक्रम में देश की शान कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे स्वतंत्रता के लिए वीर सैनिक खुदीराम बोस के बारे में। 8:15 पर चित्रपट संगीत, रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन कार्यक्रम तथा रात्रि 10 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। जबकि FM 100.9 MHz पर रात्रि 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुन पाएंगे। एग्री टिप्स आप सुनेंगे सुबह 5:55 पर। विषय रहेगा नारियल में खाद व उर्वरक। 6:10 पर आप सुनेंगे जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जवान शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। 7 आप सुनेंगे जलयानों जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप आनंद ले पाएंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा 8:30 पर, जिसमें कलाकार होंगे अनुराधा, अनवर और लकी अली। सुबह 9 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे। रात्रि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप हिंदुस्तानी शैली में उस्ताद निशार हुसैन खां का गायन सुन पाएंगे।

10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11 बजे। 11:30 पर आप चित्रलोक कार्यक्रम सुन पाएंगे। तेलुगु कार्यक्रम 12 बजे आप सुन पाएंगे, जिसमें महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। महफिल कवाली कार्यक्रम का समय रहेगा 1:10 पर। 1:30 पर फरमाइशी गीतों कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें हमारा लाइव फोन आउट कार्यक्रम प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो आप सुन पाएंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के व शेष कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं लूटमार फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार है आशा भोसले, धुन तैयार की है राजेश रोशन ने और रचना की है अमित खन्ना ने।

सुनते हैं देश परदेश फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और रचनाकार है अमित खन्ना।

श्रोताओं आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसे गाया है अमिताभ बच्चन और आशा भोसले ने, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

0: अभी आप फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে শুরু করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়া

0: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जब जीवन आपकी इच्छाओं के अनुसार ना चले तो धैर्य बनाए रखें। क्रोध और निराशा के बजाय शांत मन से परिस्थितियों को स्वीकार करें और समय का इंतजार करें, क्योंकि समय परिवर्तन लाता है, घाव भरता है, समस्याओं के समाधान देता है और हर कठिन दौर के बाद नई उम्मीद लेकर आता है। आज की इन्हीं प्यारी सी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज आपको बताना है कि गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। किसान साथियों, हमारा आज का प्रश्न है कि गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे। भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज केवल कृषि पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है। खेती के साथ साथ प्रसंस्करण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, जैविक खेती, कृषि पर्यटन और कृषि से जुड़ी सेवाएं भी रोजगार और व्यवसाय की अनेक संभावनाएं बनाती हैं। यही व्यापक सोच कृषि की उद्यमिता कहलाती है। और भाइयों, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों, तकनीक एवं बाजार की मांग को समझकर किसी कृषि गतिविधि को व्यवसाय के रूप में विकसित करना और उससे आय एवं रोजगार पैदा करना कृषि उद्यमिता कहलाती है। और साथियों, एक युवा केवल किसान बनकर नहीं बल्कि कृषि उद्यमी बनकर भी अपनी पहचान बना सकता है। आज बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए शहर की ओर जाते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और बाजार आधारित सोच के साथ काम किया जाए तो गांव में रहकर भी अच्छा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। युवा वर्ग की सबसे बड़ी ताकत नई तकनीक को अपनाने की क्षमता, डिजिटल जानकारी, नई सोच और जोखिम उठाने की इच्छा। इन खूबियों का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाए तो खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। साथियों, आज युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र की उद्यमिता का प्रमुख क्षेत्र है आधुनिक एवं स्मार्ट खेती, फल एवं सब्जियों की खेती, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, डेयरी और पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, कृषि मशीनरी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। और इन सभी तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादों को बाजार में हम बढ़ा सकते हैं। कृषि स्टार्टअप की जो संभावनाएं हैं वो इस तरह से है। कृषि क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए एग्री टेक स्टार्टअप्स की बड़ी संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, किसानों को मौसम और बाजार की जानकारी उपलब्ध कराना, डिजिटल कृषि सलाह देना, कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, ड्रोन एवं कृषि मशीनरी सेवाएं देना, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन से जुड़ी सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग और कृषि अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद तैयार कराना। इसी तरह युवा केवल खेती करने के लिए नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं। तो भाइयों, ये तो थी कुछ बातें कृषि उद्यमिता और युवाओं के लिए इसकी संभावनाओं से संबंधित। और साथियों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी मुलाकात कराते हैं मसालों का कारोबार करने वाली एक महिला एन सफीमा बेगम जी से। तो साथियों, सुनिए ये बातचीत जिसका विषय है मसालों का कारोबार आत्मनिर्भरता का आधार। किसान साथियों, आज हमारे बीच ओगरा ब्राज की रहने वाली सफीमा बेगम मौजूद हैं। सफीमा जी मसालों का व्यवसाय करती हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये मसालों का व्यवसाय करके किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं। सफीमा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मेरा नाम सफीमा बेगम है। मैं फाउंडर हूँ स्पाइस एंड हर्ब्स मसाला जो ब्रांड है उसकी, और मेरा ब्रांड एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार में स्पाइसेस का बिजनेस मेनली अंडमान एंड निकोबार में है। अभी हम लोग धीरे धीरे केरला और दिल्ली में भी ऑर्डर्स को कंप्लीट करे हैं।
0: बहुत अच्छा सफीमा जी, लेकिन हम से पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप अभी युवा हैं और युवा लोग जब इस क्षेत्र में आते हैं, कृषि के क्षेत्र में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम यही जानना चाहेंगे, आप वेल एजुकेटेड हैं तो आपने और किसी तरफ रोजगार न तलाशते हुए आपने इस काम को क्यों अपनाया?
1: एक्चुअली ये जो बिजनेस है मेरे फोर फादर से, मीन्स ग्रैंड फादर का बिजनेस था। उससे हम इसको मसाला स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं था, हमारा फैमिली का एक मिल है उसको लेके जाते हुए उससे एक मीन्स

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले

0: सर्च करके एक मसाला ब्रांड क्रिएट करना। और बिजनेस एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो अंडमान में बिजनेस एक अनटच्ड पार्ट है अभी तक
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल.
0: फॉर यंगस्टर। और एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक लहर चला है तो हम लोग भी उसको ट्राई कर रहे हैं। जस्ट
1: जी
0: नॉट एंटरप्रेन्योर अपने आप को बोलने भर का हुए नहीं है बट वी आर ट्राइंग।
1: बिल्कुल. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये व्यवसाय जो है, ये आपका पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय जो है वो चला आ रहा है, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा था, उसको आपने मॉडिफाई करने
0: यस
1: की
0: यस
1: कोशिश की
0: ब्रांडिंग
1: है.
0: करके मार्केट
1: जी,
0: में लाने की
1: बहुत अच्छा
0: कोशिश।
1: किया. अब हम जानना चाहेंगे कि इस मसालों के बिजनेस में आपने कौन कौन से मसाले रखे हैं.
0: मसाले हमारे पास बेसिक मसाले जितने भी है जैसे धनिया मिर्ची हल्दी फिर जीरा पेपर ये
1: जी
0: सब जो बेसिक मसाले हैं
1: जी
0: वो तो है। उसके साथ में हम अंडमान के लोकल टेस्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अंडमान के लोग किस तरह के फिशेस की
1: जी
0: डिश बनाते हैं उस हिसाब से फिश करी मसाला है। फिर बिरयानी भी अंडमान का बिरयानी बाकी जगह के बिरयानी से थोड़ा डिफरेंट पड़ता है तो बिरयानी मसाला और अचार मसाला फिर सांबर मसाला। सांबर मसाले में ऐसा करते हैं कि मार्केट में यूजुअली मसाले सांबर में थोड़े झाल मिलते हैं तो
1: जी
0: हम लोग उसको थोड़ा स्पाइस लेवल कम करके देते हैं ताकि मीन्स ऑप्शंस रहे।
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही तो झाल मिल रहा है तो हम लोग उसका
1: बिल्कुल.
0: स्पाइस लेवल कम करके सेल करते हैं।
1: मतलब
0: फिर
1: आपका कहना यही है कि आपने अंडमान के स्वाद के अनुसार
0: सर
1: मसालों को प्रिपेयर किया है,
0: जी
1: और वो मसाले अंडमान में किस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं.
0: अंडमान में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग प्रिजर्वेशन फ्री है। हमारा प्रिजर्वेटिव
1: जी
0: कोई नहीं पड़ रहा है और कोई कलर नहीं ऐड कर रहे हैं। मीन्स हम लोग कोई भी ऐसा चीज उसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं जिससे आपके हेल्थ को इफेक्ट पड़े। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए रिस्पॉन्स जो ट्राई कर रहा है उसको फ्रेशनेस फील हो रहा है। यस नया मसाला है
1: जी
0: अभी फ्रेशली ग्राइंड है क्योंकि उसका 3 मंथ्स का ही लाइफ स्पैन है।
1: ठीक
0: शेल्फ लाइफ
1: है.
0: बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेशन नहीं है तो हम लोग उसको तो 3 मंथ्स में आपको वो फ्रेशनेस फील होगा कि मसाला फ्रेशली ग्राउंड
1: जी
0: मसाला है करके।
1: अच्छा, तो यहाँ आपने अभी जिक्र किया कई सारे मसालों का. अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मसाले हैं, इनके लिए आपने का सेटअप जो है वो किस तरह से किया है.
0: सेटअप एक्चुअली ट्रेडिशनली एक मशीन तो था हमारे पास
1: जी
0: उसको उसी में हम लोग आज भी ग्राइंड कर रहे हैं बट उसको छोड़कर हम लोग कुछ ड्राइंग मशीन लिए हैं
1: जी
0: ताकि मीन्स मसालों को वॉश करना पड़ता है। वॉश करके उसको ड्राई करना पड़ता है क्योंकि जिस दिन आपका सनलाइट जब अवेलेबल है तो ठीक है पर
1: बिल्कुल
0: अंडमान का हालत ये है कि
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: बारिश है तो हम
1: बिल्कुल
0: लोग के पास कुछ ड्राइंग मशीन्स हैं फिर कुछ पैकेजिंग के लिए मशीन्स हैं। इस तरह से हमने 2-3 मशीन ऐड ऑन किया है और बाकी हमारे पास जो अवेलेबल था उसको भी
1: उसको यूज
0: यूज
1: करते
0: कर रहे
1: हैं.
0: हैं।
1: अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है, तो इन सब चीजों से मसालों को बचा के रखना, जैसे आपने बताया कि आपके मसालों की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम
0: कम
1: है,
0: है
1: 3 महीने की होती है, तो 3 महीने के अंदर अंदर क्या ये सारे मसाले सेल आउट हो जाते हैं.
0: सेल आउट इस तरह से होते हैं कि हम उनका स्टॉक ज्यादा नहीं करते
1: बिल्कुल.
0: बेस्ड ऑन ऑर्डर ही हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम लोग स्टॉक अप कर देंगे तो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का लेवल ये है कि वो खराब होना ही
1: हो
0: है।
1: सकते हैं.
0: हाँ
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: हम लोग इसलिए उसको स्टॉक करे बिना बेस्ड ऑन ऑर्डर्स एक वीकली एंड 2 वीक्स के अंदर में सप्लाई करते हैं। वैसे
1: मार्केट में आपके मसाले आ रहे हैं, बोल दो.
0: आ रहे हैं
1: आ रहे
0: मार्केट
1: हैं,
0: में
1: लोग पसंद कर रहे हैं ना.
0: जी।
1: अच्छा, तो मार्केट से भी आपको, मतलब लोकल मार्केट से आपको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं. अभी आपने ये भी जिक्र किया था कि आपके जो मसाले हैं वो ना केवल अंडमान में बल्कि आप ऑनलाइन भी उसकी जो शॉपिंग है वो लोग कर रहे हैं, दिल्ली और केरल में वहाँ के भी आपके कस्टमर हैं, तो आप वहाँ पर किस तरह से भेजते हैं इन मसालों को.
0: थ्रू इंडिया पोस्ट जा रहा है सामान
1: जी
0: और इंटर आइलैंड्स में भी जाता है। एक्चुअली
1: जी
0: एक ऑर्डर कैम्बल बे से आया था और कैम्बल बे से डिगलीपुर तक का ऑर्डर्स जा रहे
1: अच्छा, कैंबल बे डिगलीपुर मार्केट में भी आपके
0: हैं
1: ब्रांड के मसाले जो हैं
0: जा
1: वो
0: रहे हैं।
1: मिल रहे हैं. सफीमा जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये दिनों दिन बढ़ता जाए, लेकिन इसके पीछे हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी की मदद या सहायता आपने ली, जैसे कि घर परिवार की तो होती ही है, देखिए है ना, घर परिवार जो है वो हमारे कई रूप में हमारी मदद करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो जाए या काम से रिलेटेड हो जाए, लेकिन इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, SHG हम जिन्हें कहते हैं, कभी आपने इनसे अपनी मदद ली या इनके थ्रू भी आपने कोई काम किया.
0: जी SHG एक SHG ग्रुप है हमारे वहाँ पे ओग्रा ब्रांच में प्रतिज्ञा SHG उसका नाम है।
1: जी,
0: उनके थ्रू मेरे को 2 बार अपॉर्चुनिटी मिला है।
1: तो ये प्रतिज्ञा ग्रुप जो आपका है, आपके इलाके का ग्रुप है, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं.
0: इसमें एक 10 मेंबर्स हैं।
1: 10 मेंबर्स हैं, तो एक मेंबर आप हो.

0: सभी लोग अलग अलग तरह के काम करते होंगे।
1: जी जी सबका अपना अपना, किसी का कपड़े का बिजनेस है,
0: जी,
1: इस तरह के अलग अलग
0: अलग अलग
1: बिजनेसेस हैं।
0: बिजनेस है। तो आपने अपने मसालों के काम के लिए कभी इस ग्रुप से कोई लोन लिया हो?
1: अभी तक तो ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा है, ऐसा
0: जरूरत
1: नहीं
0: नहीं पड़ी
1: लिए
0: फाइनेंशियली, मतलब आप साउंड हो, आप
1: वो।
0: अपना निकाल
1: हाँ
0: पा रहे हो अपने
1: जी,
0: आप ही। तो और आपका SHG ग्रुप जो है आपके बिजनेस में किस तरह से मदद करता है?
1: SHG का मदद ऐसे मिला है कि फर्स्ट बार मुझे वो मरीना पार्क में, जो हमारा ये
0: फ्ली
1: लगता है ना
0: मार्केट,
1: फ्ली मार्केट में हमें कार्ट प्रोवाइड किया गया था। और सिर्फ कार्ट नहीं, हम लोगों को आने और जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया गया था।
0: अच्छा
1: उससे हमें ये फ़ायदा मिला कि हमारा ब्रांड को एक एक्सपोजर मिला, फर्स्ट
0: राइट।
1: टाइम एक एक्सपोजर था,
0: बहुत सारे
1: एक
0: और नए
1: प्लेटफॉर्म
0: लोग जो
1: था।
0: हैं उनको भी पता लगा होगा कि ये ब्रांड है, तो वहां पे कुछ लोगों ने आपके मसाले खरीदे?
1: जी, वहाँ पे अच्छा सेल था एक्चुअली। डेली वहाँ का सेल 3 से 4 थाउजेंड को
0: वेरी
1: क्रॉस
0: गुड।
1: करता था, क्योंकि मेरे मसालों का दाम कम है उस हिसाब में। 4-3 थाउजेंड बहुत ज़्यादा है।
0: बिल्कुल
1: उसके बाद हमें सरस मेला मिला, एक
0: जी,
1: प्लेटफॉर्म, सेकेंड प्लेटफॉर्म था। उसमें इससे भी ज़्यादा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला, एक्सपोजर टू, ऐसा एक्सपोजर था कि लोग बाहर से भी आए थे सरस मेला में। अगर
0: जी
1: आपको पता है तो लद्दाख और कलकत्ता से भी वहाँ पे स्टॉल था। तो हमें एक कंपटीशन या एक ये फील होता है कि लोग वहाँ पे कैसा ब्रांडिंग कर रहे हैं, वहाँ के लोग किस तरह से ये जो आर्टिसंस है उनका काम कैसा है, उनको देख के हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो कैसे काम करें। हमें ये एक्सपोजर हमें नहीं पता है कि वो
0: बिल्कुल
1: लोग कैसे
0: बिल्कुल
1: काम कर रहे हैं। तो
0: बिल्कुल
1: सरस मेला में तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज थी, हमें डिनर प्रोवाइड करते थे, हमें ट्रांसपोर्टेशन मिला है, हर स्टॉल के सामने वाटर का फैसिलिटी था, सारी फैसिलिटी उसमें बहुत अच्छी थी।
0: ये आपको सरस मेला में भी जाने का जो मौका मिला है ये SHG के थ्रू
1: जी
0: मिला
1: जी
0: है।
1: प्रतिज्ञा SHG के थ्रू मिला है, और वो कोई स्टॉल का कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, हमें फ्री एक्सपोजर मिलता है। हमारे ब्रांड को एक एक्सपोजर है कि उसमें आप सरस मेला में इवन हर यूट्यूब और बहुत सारे चैनल्स भी लाकर हमारा एडवर्टाइजमेंट किया था, तो एक
0: अच्छा
1: फ्री
0: अच्छा
1: एडवर्टाइजमेंट था वो।
0: तो सरस मेला में जाने के बाद आप क्या देखते हो कि आपके बिजनेस में कुछ सेल में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ?
1: जी, सरस मेला से मुझे एक दो रेस्टोरेंट्स का ऑर्डर्स मिला।
0: हाँ
1: वहाँ तक का हम लोग ब्रांडिंग करके सामान को बेच रहे थे, ये जो बल्क ऑर्डर वाला सिस्टम हमें नहीं मिला था। तो एक दो रेस्टोरेंट मिला और एक मैरिज ऑर्डर, ये
0: जी
1: सब जो था वो एक नया चीज़ था कि हम लोग वहाँ तक के एक कन्फाइंड जोन में चल रहे थे, अब हमें और भी एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ।
0: तो ये SHG का आपको फायदा हुआ। SHG ग्रुप जो है ये और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो समय समय पर देते रहते हैं, तो आप अभी भी उस SHG ग्रुप का पार्ट
1: जी,
0: हैं?
1: तो हम लोगों को SHG के हेल्प से AI का ट्रेनिंग देने वाले हैं,
0: जी
1: जिससे हम लोग अपना ब्रांड को आगे बढ़ाने सकेंगे। जैसे इमेज एडिटिंग हो गया, मेरा फोकस तो वेबसाइट बनाने के लिए है। अगर ट्रेनिंग लेकर अगर हम लोग भी हो सके तो वेबसाइट क्रिएशन तक होगा। तो SHG के हेल्प से बहुत, जो चीज़ के लिए हमको थाउजेंड्स ऑफ पे करना, जी
0: तो
1: वो
0: ये
1: फ्री में मिल रहा है SHG के थ्रू।
0: बहुत अच्छी बात है। तो मतलब SHG जो है ये आप लोगों के लिए या महिलाओं के लिए, कि जो लोग भी नया काम कोई शुरू करते हैं, चाहे वो युवा हो या हमारी किसान बहनें हैं या घर में रहने वाली बहनें, अगर वो SHG के साथ जुड़ती हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट जो है वो उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो ये आपने तो बताया ही है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग है?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है।
0: जी
1: जैसे अभी आपको बताया कि SHG के थ्रू हम जो वेबसाइट क्रिएट करने के सोच रहे हैं, वेबसाइट क्रिएशन जब जब होगा तो हम नेशनल लेवल में उसे सेल कर पाएंगे। यही प्लानिंग है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट, बाहर से इम्पोर्ट करके और ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने भर के काबिल हो जाए।
0: बहुत नेक विचार हैं, और कहते हैं ना कि जहां चाहा वहां रहा। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं, आप उसी मकाम पे पहुंचे और आपके मसाले जो हैं वो ना केवल अंडमान या हमारे इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो जाएं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपसे इतनी बातें हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: मसालों का कारोबार आत्मनिर्भरता का आधार। किसान साथियों, अभी आपने सफीमा जी से की गई ये बातचीत सुनी और जाना कि वो मसालों के व्यवसाय को रोजगार के रूप में अपनाकर किस तरह से

बेहद खूबसूरत सा गीत आपने सुना। हम उम्मीद करते हैं कि इसे आपने ज़रूर पसंद किया होगा। कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था, गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग 16 से 18% तक होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी। साथियों, अब ले लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। अगले दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान जिले में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा लगभग 140 मिलीमीटर रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 87 से 90% तक तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 79 से 83 के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 24 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। हवा की मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने की संभावना व्यक्त की गई है और इस दौरान आकाश बादल युक्त रहेगा। साथियों, इस मौसम के चलते मौसम चेतावनी इस प्रकार से है कि मेघार्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसानों को मेघार्जन के दौरान खेतों में कार्य न करने तथा मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और नवीनतम समुद्री मौसम चेतावनियों का पालन करने की भी बात कही गई है। किसानों को मेघार्जन के दौरान खेतों में कार्य न करने और उचित जल निकासी बनाए रखने तथा उर्वरकों एवं पौधों के संरक्षण रसायनों का प्रयोग केवल शुष्क मौसम में ही करने की सलाह दी जाती है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मौसम पर आधारित कृषि परामर्श।

0: और साथियों, बातों और जानकारियों की किसानवाणी की इस संध्या को आज के लिए अब हम समेट लेते हैं, क्योंकि वक्त हमें और अनुमति नहीं दे रहा। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और फिलहाल के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं चलिए सुनते हैं कार्यक्रम श्यामे बहार। श्रोताओं कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म जहर से। संगीत से सजाया है मिथुन शर्मा और नरेश ने, बोल है शाहिद कादरी की और गायक कलाकार है आतिफ।

हमारी अगली पेशकश है फिल्म ये दिल से, स्वरों से सजाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने और बोल है समीर की।

0: श्रोताओं आइए सुनते हैं एक आवश्यक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: श्रोता अब सुनिए सोनू निगम और अलीशा चुनाई की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है नो एंट्री, रचना है समीर की और संगीत बद्ध किया है अनु मलिक ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म कसक से, आवाज़ है लकी अली की, संगीत निर्देशन है MM करीम और रचना की है समीर ने।

सुनिए शंकर महादेवन की आवाज में ये गीत। धुन है शंकर एहसान रॉय की, बोल है जावेद अख्तर की और फिल्म का नाम है दिल जो भी कहे।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अक्सर फिल्म का ये गीत। स्वर है हिमेश रेशमिया की, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने और बोल है समीर की।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम बहार अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 8 बजे संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन कार्यक्रम तथा रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे। जबकि FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

7:30 पर यू वाणी कार्यक्रम में देश की शाम कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे स्वतंत्रता के वीर सैनिक खुदीराम बोस के बारे में। 8:15 पर चित्रपट संगीत रोजगार समाचार गौरव गान प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त

0: और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। श्रोताओं, मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 में ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
5: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
6: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
7: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
4: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
8: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
4: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
9: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
4: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
9: यन पॉलिसी यन कयल।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें। फसल

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को संसद की मंजूरी। सरकार ने बताया न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर द्वीपवासियों से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल ने अबड़िन सरकारी मॉडल स्कूल का किया दौरा। छात्रों को स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के लिए किया प्रेरित। और मत्स्य पालकों और संबंधित हितधारकों के लिए जलीय जीवों की बीमारी की रोकथाम पर कार्यशाला आयोजित कर स्वस्थ स्टॉक के उपयोग की सलाह दी।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज विधेयक को पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन में पेश किया। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की

योग्यता, नियुक्ति और सेवा शर्तों में एक रूपता लाना तथा उनके कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। इसमें राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान है। चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार ने 2015 में न्यायाधिकरणों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने कहा कि नया कानून न्याय व्यवस्था को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। सांसद विष्णुपद रे ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और द्वीपवासियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों के जल्द समाधान के लिए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और द्वीपों में विकास कार्यों के लिए वार्षिक बजट आवंटन बढ़ाने की मांग की गई। सांसद ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगर पालिका परिषदों के प्रभावी कामकाज तथा विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। इसके अलावा ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा और उपयुक्त पुनर्वास पैकेज देने तथा द्वीपवासियों को बेहतर और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद को आश्वासन दिया कि वे इन मामलों पर विचार करेंगे और इनके जल्द समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि योजना के तहत देश भर में अब तक 28,000 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में सब्सिडी जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह मांग आधारित योजना है और ग्रिड से जुड़े बिजली कनेक्शन वाले सभी आवासीय उपभोक्ता रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। श्री जोशी ने कहा कि योजना का बजट वर्ष 2025-26 में 17,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2026-27 में 22,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जुलाई तक योजना के तहत 14.65 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष को संसद में चर्चा में भाग लेकर अपने मुद्दे रखने चाहिए। डॉक्टर त्रिवेदी ने कांग्रेस पर चर्चा का मुद्दा बदलने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर सदन में जवाब देने के लिए तैयार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है स्कूल दौरा और कार्यशाला। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्रलाल ने आज एबरडीन सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों को स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। श्री लाल ने छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। उन्होंने शारीरिक रूप से फिट रहने और शरीर तथा मन पर बुरा असर डालने वाली हानिकारक चीजों से दूर रहने पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्कूल में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक, खेल और अन्य गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर स्कूल की उप प्रधानाचार्य बिंदु वर्मा भी उपस्थित थीं। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मत्स्य विज्ञान विभाग ने कल जलीय जीवों की बीमारियों की रोकथाम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला जलीय जीवों की

0: बीमारियों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक ने की। मत्स्य विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर मुर्गानंदम कार्यशाला के संयोजक रहे, जबकि वैज्ञानिक डॉक्टर जे प्रवीण राज कोष निदेशक रहे। कार्यशाला में मत्स्य विभाग के अधिकारी और फील्ड कर्मचारी, किसान, झींगा पालक, सजावटी मछली के व्यापारी और केज कल्चर संचालकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जलीय जीवों के स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम, बायो सिक्योरिटी और क्वारंटाइन के महत्व पर जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को स्वस्थ स्टॉक भरोसेमंद स्रोतों से लेने और नए स्टॉक को शामिल करने से पहले उसकी स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई। कार्यशाला का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जलीय जीवों की बीमारियों की निगरानी और रोकथाम के लिए संबंधित लोगों की जागरूकता और क्षमता बढ़ाना था। कदमतला थाना क्षेत्र के राजीव नगर स्थित आवास से कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा के सुबह करीब 5 बजे लापता होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही कदमतला थाने में बीएनएस की संबंधित धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए छात्रा की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस को छात्रा के शांतनु कदमतला क्षेत्र में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब 4 घंटे के भीतर छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद छात्रा को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। उधर रंगत थाना क्षेत्र के निम्बूतला निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति 9 अगस्त से अपने घर से लापता थे। परिवार से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए तलाश अभियान शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को लापता व्यक्ति के बेटापुर क्षेत्र में होने की जानकारी मिली। इसके बाद रंगत थाना पुलिस ने बिलीग्राउंड थाना पुलिस के साथ मिलकर तुरंत कार्रवाई की और लापता व्यक्ति को बेटापुर से सुरक्षित ढूंढ निकाला। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा कार्यालय की ओर से 17 अगस्त को खेल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रों के लिए होगी और 7 चरणों में आयोजित की जाएगी। इच्छुक छात्रों से श्री विजयपुरम स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा के सभागार में सुबह 9:30 बजे उपस्थित होने को कहा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को संसद की मंजूरी। सरकार ने बताया न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर द्वीपवासियों से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल ने अबडीन सरकारी मॉडल स्कूल का किया दौरा। छात्रों को स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के लिए किया प्रेरित। और मत्स्य पालकों और संबंधित हितधारकों के लिए जलीय जीवों की बीमारी की रोकथाम पर कार्यशाला आयोजित कर स्वस्थ स्टॉक के उपयोग की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी और जो बच्चे छूट जाए उन्हें मॉपअप दिवस पर दवाई खिलाई जाएगी।
2: कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: खुले में शौच ना करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे रखें, जूते हमेशा पहनें।
3: कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोता अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। सबसे पहले सुनते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जन सेवाओं को परसों तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर वर्षा होगी तथा बिजली चमकने के साथ हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने की आशंका बताई गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति

35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि वे 14 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी स्टेट आइलैंड मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर 12 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी अगले ही दिन 13 अगस्त को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर 13 अगस्त को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान उसी रोज रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एम वी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर 12 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान 13 अगस्त को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एम वी सेंटिनल लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल ननकौरी माकाचुआ अरफा बे होते हुए कैमल बे के लिए 13 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी 16 अगस्त को रात 9 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर 14 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी अगले ही दिन 15 तारीख को 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर 15 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान की वापसी अगले दिन 16 तारीख को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी नालंदा लिटिल अंडमान की यात्रा पर 14 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी अगले ही दिन यानी 15 तारीख को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी बम्बुका स्वराद्वीप की यात्रा पर 14 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी उसी दिन सवेरे 8:45 पर स्वराद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये थे जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: श्रोताओं आइए सुनते हैं एक आवश्यक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए।

0: प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अभी आप मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:22 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल से फिर याद किया। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं कुमार सानू और साधना सगरम की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है सपूत, जिसे संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हर घर तिरंगा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रेरणादायक अभियान है। इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना से जोड़ना है। तिरंगा हमारे देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके तीन रंग केसरिया, सफेद और हरा हमारे जीवन के महत्वपूर्ण आदर्शों को दर्शाते हैं। बीच में बना अशोक चक्र निरंतर प्रगति और कर्तव्य का संदेश देता है। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान लोग अपने घरों, विद्यालयों और अन्य स्थानों पर तिरंगा लगाकर देश

के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। यह अभियान हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके संघर्ष की याद दिलाता है, साथ ही यह हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। हमें तिरंगे का सदैव सम्मान करना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का सुंदर संदेश है। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी वो वीर थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। उनके सीने में देशभक्ति की ऐसी लौ जल रही थी जिसके आगे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और अत्याचार भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्होंने सुख आराम की जिंदगी छोड़कर कांटों की राह चुनी ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां आजाद हवा में सांस ले सके। दोस्तों, आज का कार्यक्रम स्वतंत्रता के वीर सैनिक खुदीराम बोस पर है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक वीरों के त्याग, साहस और बलिदान से भरा हुआ है। इन्हीं महान क्रांतिकारियों में एक नाम खुदीराम बोस का है जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के बहु वैनी गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध की भावना थी। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना तेजी से बढ़ रही थी और उनका प्रभाव खुदीराम बोस पर भी पड़ा। किशोरावस्था में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प ले लिया। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि देशभक्ति के लिए उम्र नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और साहस आवश्यक होता है।

0: दोस्तों, खुदीराम बोस का जीवन उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन से गहराई से जुड़ गया था। वे अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों के संपर्क में आ गए और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लेने लगे। वे देशभक्ति से संबंधित पर्चे बांटते और लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाने का प्रयास करते थे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन और तेज हो गया। इस वातावरण में खुदीराम बोस के विचारों को और मजबूत किया। वे मानते थे कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। उनका आत्मविश्वास और निडरता इतनी अधिक थी कि वे बहुत कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के निगाहों में आ गए। उनके भीतर मातृभूमि के प्रति ऐसा समर्पण था कि उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की चिंता किए बिना स्वतंत्रता के संघर्ष को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया।
1: मेरा रंग दे बसंती चोली।

0: दोस्तों, खुदीराम बोस के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना 1908 की मुजफ्फरपुर घटना थी। उन्हें प्रफुल्ल चाकी के साथ ब्रिटिश अधिकारी डॉगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। किंग्सफोर्ड अपने कठोर फैसलों के कारण क्रांतिकारियों के निशाने पर थे। मुजफ्फरपुर घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने व्यापक कार्रवाई शुरू की। खुदीराम बोस वहां से निकलने का प्रयास करते हुए वैनी रेलवे स्टेशन के पास पकड़े गए। इस घटना का उद्देश्य और परिणाम दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय बन गए।
1: कर चले हम पिता जानत

दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया। उस समय उनकी आयु केवल लगभग 18 वर्ष थी। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराकर मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस और धैर्य नहीं खोया। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उनका बलिदान पूरे देश में चर्चा का विषय बना और विशेष रूप से युवाओं के मन में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल किया। खुदीराम बोस की निर्भयता ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के प्रसिद्ध शहीदों में स्थान दिलाया। उनका जीवन या संदेश देता है, अन्याय के सामने साहस और अपने आदर्शों के प्रति निष्ठा मनुष्य को इतिहास में अमर बना सकती है।

दोस्तों, खुदीराम बोस का जीवन आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में देश के प्रति ऐसी निष्ठा दिखाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका बलिदान हमें स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्य को समझाने की प्रेरणा देता है। भारत की आज़ादी केवल एक व्यक्ति या एक आंदोलन के कारण प्राप्त नहीं हुई, बल्कि असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और त्याग का परिणाम था। खुदीराम बोस उन वीरों में से थे जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश के लिए संघर्ष किया। आज हमें उनके जीवन से देश प्रेम, साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की सीख लेनी चाहिए। उनके बलिदान को याद करना केवल इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि उन मूल्यों को सम्मान देना है जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ कार्यक्रम देश की शान।

अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभरात्रि। श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए संसद समीक्षा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉ बीआर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजद के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दीराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजद के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के

विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खरगे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खरगे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के IS इनबादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, S सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खरगे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर

केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

श्रोताओं, अभी आप संसद समीक्षा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं देश प्रेमी फिल्म से ये गीत। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल है आनंद बख्शी की और स्वर है मोहम्मद रफ़ी की। नफर

श्रोताओं, अब सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है अपमन, रचना है विजय सिंह और शैरोन प्रभाकर की।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। सबसे पहले सुनते हैं रोजगार समाचार। भारतीय वायु सेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीनों या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार

अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक लेवल 2 से के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वसाहित्यपिक प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिस कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784104 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देख सकते हैं। ये था रोजगार समाचार। अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचारों व अन्य कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली केंद्र की ओर। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा।

0: लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और

0: एसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में

0: व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए एआई को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एआई ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Manthan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारेख। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर पारेख, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पारेख, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,25,00,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत हुए हैं और 1,00,00,000 से ज्यादा मकान पूरे भी हो चुके हैं। अगर इनिशियली हम देखें तो वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक शहरी आवास की तस्वीर में काफी बदलाव आया है, तो आपके विचार में इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव जो था वो क्या था?
2: देखिए, पक्का हाउस मिलना ये सबके लिए बहुत जरूरी बात है। अब जब हम क्लाइमेट चेंज के का प्रभाव देख रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रहा है, ये सब के जरिए हैविंग ए शेल्टर, एक अच्छा मकान होना ये एक जरूरी बात है। लेकिन एक दृष्टि देखिए तो जो सबको न पक्का मकान अर्बन एरिया में देना वो टारगेट था 2022 का, इसमें दो बहुत बहुत प्रगति हुई है, फिर भी टारगेट से हम दूर है। फिर भी जितना हुआ है इसके प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। घर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अंदर रहने से, आबोहवा से, गर्मी से आपको राहत मिले। अरे इसके लिए हमको पक्का मकान की जरूरत है, लेकिन पक्का मकान की एक और भी बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए
1: जी।
2: गरीब लोग को एक पक्का मकान अपना होना एक बहुत इज्जत की बात होती है, जो सोसाइटी में, समाज में उनका महत्व बढ़ता है और लोग समझते हैं कि अच्छा है, इनके पास एक घर तो अपना है। और इसके असर काफी होती है, क्योंकि लड़के के लिए अच्छी

0: और लड़की के लिए अच्छा है, घर मिल सकता हूँ एक्सचेंज में।
1: जी
0: तो ये सब मेरे ख्याल से बहुत अगत्य की बात थी कि ऐसा पीएम आवास योजना अर्बन में ऐसी सुंदर घोषणा की सरकार ने।
1: पारिक जी, आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो दूसरा चरण है 2.0, तो जाहिर सी बात है इसे पिछली योजना के अनुभवों से सीख लेकर तैयार किया गया है और अगले 5 वर्षों में शहरी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने को विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी स्थितियों में अगर देखें तो किस तरह का बदलाव लाया गया है और किस तरह से जो चुनौतियां भी सामने आई उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: बात एक सच सच है कि पहले चरण में हमने लगभग 1 करोड़ लोग को आवास दिया है,
1: जी
0: और अगर हम दूसरे चरण में ऐसी प्रगति करें तो भी काफी होगी, बट इससे भी अच्छा कोई कर सके तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मेरा ख्याल से इसमें क्या हुआ है कि सडनली जो सब्सिडी दे रहे वो कैसे मिलनी चाहिए ये सब आसानी से हो गया है, तो पहले से इससे ब्यूरोक्रेसी की कम हुई है। यानी इसकी जरूर असर होगी कि कभी लोग को पहले से एप्लीकेशन किया लेकिन उनको मिला नहीं, लेकिन आज बहुत सा अप्रूवल हो गया है
1: जी
0: और काफी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट किया गया है। तो अगत्य की चीज ये है कि बस हम ये प्रोग्राम जारी रखें जब तक पूरा ध्येय हासिल न हुए, और ध्येय हासिल करने के लिए जितने ताकत जोर और पैसे लगाना चाहिए।
1: परीक जी, अभी जो 6 अगस्त को बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई थी, इसमें 2 लाख से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई है और ये भी कहा गया कि 1,42,000 मकान लाभार्थी आधारित निर्माण और 67,000 से अधिक मकान जो है वो साझेदारी में किफायती आवास के तहत बनाए जा रहे हैं। तो ये जो 2 मॉडल रखे गए हैं तो इनका लाभ किस तरह के परिवारों को मिलता है और जिन परिवारों के पास अपनी जमीन है या फिर अपनी जमीन जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन योजनाओं से?
0: इसमें बहुत से पहलू है। एक तो छोटे स्लम क्लियरेंस है, स्लम डेवलपमेंट, इसमें तो जो वहां रहते हैं स्लम ऑफिशियल स्लम रेसिडेंट है सबको मकान मिलने वाला है। ज्यादातर मकान देने में प्रॉब्लम ये होती है कि जमीन नहीं मिलती है,
1: जी
0: लेकिन इसमें से जमीन मिल रही उनको मिल जाएगी। दूसरा पहलू ये है कि सरकार जिसके पास जमीन है अपनी उनको भी मदद करती है, और जिसके पास पुराना घर है उनको अपग्रेड करना चाहे इसके भी मदद होती है, और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेने के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम बनाई है। तो मेरा ख्याल से ये सब स्कीमों हैं 5-6 अलग अलग तरीके के, इससे नॉट ओनली EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन बट ऑल्सो मिडल और अपर मिडल को भी फायदा होगा। एंड इसका जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की बात करें जिसको हमको मदद करते हैं वो धीरे धीरे उनके साथ जो दूसरे को मदद नहीं होती है इसके ऊपर वाले थोड़े, तो इनको होता है कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब हमको क्यों नहीं। मेरा ख्याल से जरा कॉम्प्रहेंसिव विचार करके प्रोग्राम बनाया गया है।
1: आइए सुनते हैं पीएम आवास योजना पर ये विशेष रिपोर्ट।
2: देश के शहरों में बिना पक्के मकान के रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक बड़ी पहल रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। महिलाओं को घर के स्वामित्व में भागीदारी देकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना भी इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इस योजना के दोनों चरणों के तहत मंजूर घरों में से लगभग 1 करोड़ घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। ये घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 25 जून 2015 से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले और सभी मौसम में सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर इसे आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण को 4 श्रेणियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें लाभार्थी द्वारा निर्माण, साझेदारी में आवास निर्माण, किफायती किराए का आवास और ब्याज सब्सिडी योजना शामिल है। बीते सप्ताह 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 8वीं बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 1.42 लाख घर लाभार्थी द्वारा निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इस श्रेणी में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं 67,045 घर साझेदारी में आवास निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इसमें राज्य और केंद्र शासित

0: देशों के साथ साझेदारी में सार्वजनिक और निजी एजेंसियां किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं और पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक मांग आधारित योजना है, यानी लाभार्थियों के आवेदन के बाद मांग का आकलन, परियोजनाओं का निर्माण और लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार योजना की प्रगति की निगरानी करती है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मंजूर घरों को तय समय में पूरा करने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने पिछले वर्षों में शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब 1 करोड़ से अधिक घरों के पूरा होने के बाद अगली चुनौती मंजूर घरों को समय पर पूरा करना और दूसरे चरण के तहत तय किए गए 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: पारिक जी, इस योजना में महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त स्वामित्व में मकान देने को विशेष प्राथमिकता दी गई, यानी कि अगर किसी महिला को मकान दिया जा रहा है तो उसे विशेष प्राथमिकता मिलेगी। तो कुल जो 1,25,00,000 स्वीकृत मकान है, इसमें लगभग 1 करोड़ मकान जो है महिलाओं के नाम या फिर संयुक्त स्वामित्व में है। तो इस तरह का जो फैसला है, ये महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका में किस तरह से बदलाव आपको बताता है, किस तरह से दिखाता है कि अब महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भागीदारी बदल रही है?
2: महिलाओं को जब हम घर की मालिकी देते हैं तब उनका प्रभुत्व बढ़ता है, घर में उनकी एजेंसी बढ़ती है और ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जितना बने इतना करे। तो ये अच्छी बात है प्रोग्राम में कि महिलाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है और सबसे ज्यादा तो वीडोज को और भी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ये जरूर है। इनके लिए उनकी घर में भी इनकी आवाज की कीमत ज्यादा होगी और लोग उनको इनका फैमिली नाउ का जो फैमिली है वो भी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: डॉक्टर पारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक मांग आधारित योजना है और परियोजनाओं के प्रस्ताव जो हैं वो राज्यों से या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से आते हैं, तो ऐसे में क्या अलग अलग राज्यों की प्रशासनिक क्षमता और शहरी नियोजन व्यवस्था के कारण योजना को कैसे मतलब चेंज किया जाता है कि किसी प्रदेश में इस तरह से ये आवास बनेंगे, दूसरे प्रदेश में दूसरी तरीके से बनेंगे, या फिर संख्याओं का जो वितरण होता है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं?
2: हमारा जो राष्ट्र है इसमें राज्यों की सरकार को काफी स्वतंत्रता मिलती है तो इसको साथ में ले जाना जरूरी है। मेरा ख्याल से ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें सब राज्यों को भी ऐसा लगेगा कि हमारे हित में है, जो उनकी सरकार है उनको भी लगेगा, इससे हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी। मेरा ख्याल से तो राज्यों को तो अलग अलग करना है लेकिन राज्यों को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी 1 डजन से हमारे यहाँ दरेक राज्य में अलग अलग सरकार है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ध्येय है, उसकी समझ नहीं आती है लोगों। और कभी कभी ऐसा एक लगता है कि ये तो अच्छी बात है, दूसरे को लगे कि इससे अच्छा दूसरा कोई है, तो इसमें ये प्रॉब्लम तो होने वाला ही है, बंधारण ने दिया हुआ प्रॉब्लम है तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन राज्यों के साथ बातचीत करके प्रोग्राम को मठारित कर सकते हैं कि कैसे करा जाए, कैसे दिया जाए, जितना बने इतना ज्यादा राज्य इसमें ना पूर्ण योगदान दे।
1: जी डॉक्टर पारिक, पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात हम करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,18,00,000 से अधिक मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से करीब 88,00,000 से अधिक मकान पूरे हुए हैं और इनमें 8,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हुआ था। तो अगर रोजगार के नजरिए से देखें तो इतने बड़े निर्माण कार्यक्रम का क्या महत्व है, और जाहिर सी बात है इसमें निर्माण सामग्री की भी काफी मांग होती है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा और लोगों के लिए किस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए?
2: काफी लगता है फिर भी हमको देश में कितना कंस्ट्रक्शन, कितना बांधकाम हो रहा है इसके हिसाब से इसको देना चाहिए। इससे सर्टनली थोड़ी बढ़त होती है बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, कब से ज्यादा अनस्किल लेबरर को एम्प्लॉय करता है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम से घर बांधने से सबका फायदा होता है और खास करके वो अनस्किल लेबर उनका।
1: जी, और सरकार का लगातार लक्ष्य ये रहा है कि सरकार ने इन योजनाओं के साथ में जल जीवन मिशन को जोड़ा है, स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा है, सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं, बिजली जो पहले एक बड़ी समस्या मानी जाती थी आज उस दिशा में इतना काम हो रहा है कि घर पर ही लोग अपना सौर पैनल लगा करके अपनी बिजली बना सकते हैं और साथ ही अगर एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन होता उसे बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाओं के साथ

0: मानी जाती थी, आज उस दिशा में इतना काम हो रहा है कि घर पर ही लोग अपना सौर पैनल लगा करके अपनी बिजली बना सकते हैं, और साथ ही अगर एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन होता उसे बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाओं के साथ तालमेल किया जा रहा है, इनसे नागरिकों के जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है?
1: पहले हमने आवास योजना बनाई थी और आज की आवास योजना में ये जो बदलाव आया है अलग अलग प्रोग्राम का लिए, स्वच्छता मिशन, 95% से भी ज्यादा घरों में आजकल बिजली पहुंची है, तो
0: जी
1: इससे बहुत फर्क हुआ है। इसलिए लोगों का बस क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी अपेक्षाओं बढ़ गई है।
0: पारिक जी, सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है लोगों को, ताकि वो अपने खुद का मकान जल्दी से जल्दी बना सकें। तो लोग इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
1: ये अलग चीज है कि बिल्कुल फ्री मकान देने की वजह सबको कहा है कि बस हम तो सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग आसानी से थोड़ा लोन अपने आप लेते हैं और उसको फिर मेरा मकान है, मैंने इसका पैसा दिया है, ये सब भाव से उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी बढ़ता है। मेरा ख्याल से काफी असर होती है सबके ऊपर। बट अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम है इसमें फाइनेंशियल एड सबको मिलती है,
0: जी
1: लेकिन इसको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल से अच्छी चीज है। क्योंकि खाली पूरी फ्री बिल्डिंग देने से क्या होता है कि लोगों के बस सरकार पर निर्भरता बढ़ती जाती है और इससे पोते अपने आप जो प्रयत्न करना चाहिए करने से कम होता है। ये अच्छी बात है कि सरकार सभी बहुत सी तरीके से मकान में सहाय देती है फाइनेंशियल, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पूरा नहीं, ओनली पार्शियल है एड इज गिवन।
0: जी डॉक्टर पारिक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा सौभाग्य आपने मुझे बुलाया है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीत एस पारिक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण

0: तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
1: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुराने विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, "The Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard." The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act of 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. In Jharkhand, a BJP called Bandh

0: affected normal life in several parts of the state today, following alleged police action against students protesting irregularities in JPSC and GSSC recruitment examinations. In Ranchi, ABVP workers attempted to march from the old Vidhan Sabha to the new Vidhan Sabha, but were stopped and detained by the police. More than 200 workers were reportedly taken into custody. Meanwhile, the student agitation entered its 18th day, with protesters continuing to demand cancellation of the disputed exams, a CBI probe, and reforms in the recruitment process. Several students also continued their hunger strike. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, the External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "In matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China." Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
1: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
0: On Indian High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rehman, Mr. Jaiswal said New Delhi has extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session, which will be held in the national capital. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till the 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi today urged countrymen to celebrate Independence Day with pride and grandeur, taking a pledge to build a Viksit Bharat. Sharing a video on a social media platform, Mr. Modi urged all to hoist the tricolour at their homes under the Har Ghar Tiranga campaign. And in Canadian Open tennis, 19 seed Luciano Dardelli of Italy will face 28 seed Brandon Nakashima of the US in the men's singles quarterfinal in Montreal tonight. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने कहा चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक, दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 200 से अधिक हुई। सीरियाई अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया।
1: द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलत फहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हरण हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
2: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13

0: अगस्त से विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। POJK में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। इस इलाके में लोगों के अगवा किए जाने की खबरों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि आज 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, बल्कि दुनिया से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से मीडिया ने बताया कि 3000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया में आए भूकंप से हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इसराइल की संप्रभुता को मान्यता दे दी है। अमेरिका के बाद इसराइल में इस क्षेत्र के विलय को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला कोलंबिया एकमात्र अन्य देश बन गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि न्यायाधीश फखर अल दीन अल आर्यन ने असद को देश के सर्वोच्च निर्णयकर्ता के रूप में सरकारी संस्थानों को हिंसा का आदेश देने के लिए दोषी ठहराया है। असद के चचेरे भाई अतीफ नजीब और कई अन्य पूर्व अधिकारियों को भी मौत की सजा सुनाई गई है। कांगो में इबोला महामारी से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 4381 मामले दर्ज हुए हैं। 211 लोगों की मौत हो चुकी है और 704 मरीज अस्पताल और आइसोलेशन केंद्रों में हैं। स्वास्थ्य अधिकारी विद्रोही संघर्ष, खराब सड़क और भुगतान विवादों के चलते काम बंद होने के कारण महामारी से प्रभावित दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के तहत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत और अमेरिका ने समझौते के अंतर्गत खुले वैज्ञानिक डेटा को साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।

0: भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक से भारत और अमेरिका की पहल ट्रस्ट के अंतर्गत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला है। दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष नासा और इसरो के संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन की सफलता के बाद आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: चीन का संचार उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं गौरव गान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोता आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जन सेवाओं को परसों तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर वर्षा होगी तथा बिजली चमकने के साथ हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने की आशंका बताई गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि वे 14 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हमारी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 21वीं तिथि यानी 12 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 45 सेकंड हुए हैं। अपनी पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। समय है अनमोल विचार का।
1: युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति और उम्मीद होते हैं। उनके सपने, ऊर्जा और नए विचार समाज को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए युवा को अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए शिक्षा, मेहनत और अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए। आज का युवा यदि यही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े तो वो न केवल अपना भविष्य बल्कि पूरे देश का भविष्य उज्जवल बना सकता है।
0: यह था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।